0: जबलग मोहो मगन संग माए प्रभ कृपा ते बंधन टूटे
1: गुर प्रसाद नानक हो छूटे
0: सहस खटे लह कोठ तावे
1: नृत्य नावे माया पाछे पावे
0: अनेक भोग।

0: संत का निंदक महाताई,
1: संत का निंदक टेक न पाई,
0: संत का निंदक महा त्यारा,
1: संत का निंदर परमेश्वर मारा,
0: संत का

0: जनगत पाए।
1: रूप सत जाका सत अस्थान,
0: पुरख सत केवल प्रदान,
1: करतूत सत सत जाकी वाणी,
0: सत पुरख सने समाणी,
1: सत कर्म जाकी रचना सत,
0: बोल सत सत उत पत,
1: सत करनी निर्मल निर्मली,
0: जिसे बजाए तिसे सत पली,
1: सत नाम प्रभु का सुखदाई,
0: विश्वास सत नानक गुरते पाई,
1: सत बचन

0: अनेक भगत बंधन नित कर है
1: चरण कमल हृदय सिमरे
0: सद बलिहारी सतगुरु अपने
1: नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभु जपने।

0: अपनी जोत धरे
1: कब कवन निधन कवन कत डरे
0: आपन चलत आप करने हार
1: नानक ठाकर अगम पार
0: अविनाशी सुख अपने आसन
1: जब मरंका कहां विनाशन
0: जब पूरन करता प्रभ सोए
1: तब जम की त्रास कौन किस होए
0: जब अभिगत अगोचर प्रभ इका
1: तब चित्र गुप्त कुछ पूछत लेखा
0: जब नाथ निरंजन अगोचर अगादे
1: तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे
0: अपने आप ही चर जा
1: नानक अपन रूप आप ही उपर जा
0: जय निर्मल पुरख पुरख पत होता
1: तय बिन मैल कहूं क्या तोता
0: जय निरंजन निरंकार निर्वाण
1: तय कौन कौन मान कौन अपमान
0: जय स्वरूप केवल जगदीश
1: तय शाल क्षेत्र लक्त को कीस
0: जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे
1: तय किसे भूख अवंतर बतावे
0: करन करावन करने हार
1: नान करते का नाही सुमार
0: जब अपनी शोभा अपन संग बनाई
1: ना कवन माई बाब मित्र सुत पाई
0: जय सर्व कला आप है परवीन
1: तय वेद कतेव कहां को चीन
0: जब अपने आप और धार
1: सगल सगल कहां विचारे
0: जय आपन ऊंच आपने

0: कार्य पूरा
1: मत पूरी अमृत जाके दृष्ट
0: दर्शन पेख दूतल श्रेष्ठ
1: चरण कमल जाके अनूप
0: सफल दर्शन सुंदर हरूप
1: धन सेवा सेवक परवान
0: अंतर जामी पुर प्रदान
1: जिस मन बसै सो होत।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो दर तेरा केहा सो कर केहा जितवै सर्ब संभाले

मुक्त से मुक्त पाए जिन हर त्याया जी तिन टूटी जम की फांसी जिन निरभाओ जिन हर निरभाओ त्याया जी तिन का पाओ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनक अनेक अनंता

तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी, तुद आपे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावै करते के जी, जो सब साय का जानोई। आसा महला चौथा।

रे दुष्ट सबै तुम गावो, आप हाथ दय मोहे बचावो, सुखी बसै मोरो परवार, सेवक सिख सबाए करतार, मोर अच्छा निज करदय करे, सब बैरण को आसंगरे, पूर्ण होए हमारी आशा, तोर भजन की रहे प्यासा, तुम्हें शाड कोई अवर ना त्याहू, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं, सेवक सिख हमारे तारिया है, चुन चुन शत्रु हमारे मारिया है, आप हाथ दें मुझे उबर है, मरण काल का त्रास निबर है, उज्जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तु करे हो रक्षा, राख लियो मय राखण हारे, साहेब सं सहाय प्यारे, दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता, काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिवजू आवतरा, काल पाए कर विष्ण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जबन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा जू थियो, जबन काल सब लोग सवारा, नमस्कार है तहे हमारा, जबन काल सब जगत बनायो, देव दैत जच्छन उपजायो।

स्वरूप स्वयं भव अवरक्षा मेरी तुम करो सिख उबार या सिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण काता जे अस तुझ तब सरणी परे तिनके दुष्ट दुखित हवे मरे पुरख जमन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार त्याय है ताके काल निकट नह है रक्षा हुए तहे सब कल्ला दुष्ट अरिष्ट टर

सब होई, दुष्ट शबा सके न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास्ते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, दार्द दुष्ट दुख ते रहा। खड़ग केत मैं सरन तिहारी, आप हाद लेहो उबारी। सर्ब ठौर मोह सहाई, दुष्ट दुख ते लेहो बचाई। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता। किल बिग सकल देहे को हरता, दुष्ट दुखियन को

अपना जान मुझे प्रत प्रिय, चुन चुन शत्रु हमारे मरिय, देख तेग जग में दऊ चल्ला, राखा मैं और ना दलाय तुम।

करो भरत पारा, तुम साहिब मैं किं कर थारा। दा जान दे हाथ उभारो, अमरे सबैरियन संगारो, प्रथम तरो भगवत को ध्याना, बहुर करो कविता बिदनाना। किशन जथा मत चरित्रो चारो, चू गए कबरे हो सुधारो, कभी बाज दोहरा जो निज ब्रह्मो सो कहा, सो कह हो जग माहे, जो ते प्रभ को त्याय है, अंत स्वर्ग को जाहे दोहरा। हर हर जन द्वी एक है, बिबिचार कछ नाहे, जल ते उपजत रंग ज्यों, जल ही बिखे समाहे दोहरा। जब आए स प्रभ को भयो, जन्म धरा जग आए, अब मैं कथा संक्षेपते, सब हूं कहत सुनाए, कब बाज दोहरा। ठाट पयो मैं जोर कर, बचन कहाँ सिर न आए, पंथ चला तब जगत में, जब तुम करो सहाय दोहरा। जे जे तुमरे ध्यान कौ, नितुड़ त्याय हैं संता, अंत लहेंगे मुक्त फल, पामेंगे भगवंत दोहरा। कालपुर की देह मो, कोटक विषण महेश, कोट इंद्र ब्रह्मा किते, राव सस करो रजलेश दोहरा। राम कथा जुग जुग अटल, सब कोई पाखत नेत, सुर्ग बास रग बरकरा, सगरी पुरी समेत चौपाई। जो ये कथा सुने अर गावे, दुख पाप ते निकट न आवे, विषण भगत की ए फल हो ही, आद ब्याद शब सके न कोई। सम्मत सत्रह सहस पछावन, हाड़ बधी प्रथम सुखदावन, त्व प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा, फूल परी लो लियो सुधारा दोहरा।

राम राजे जिस लागी पीर ब्रह्म की सो जाने जरिया जीवन मुक्त सो आखिया मर जीवे मरिया जौंदे जी मुक्त हो जान। आप नूं पता आप एक दिन एक और वचन लिया सी जो नर दुख में दुख नहीं माने। चलो थोड़ा जा तीन दो श्लोक और पढ़ लो। सुख दुख जाए परसै नहीं लोभ मोह अभिमान कहो नानक सुन रे मना सो मूर्त भगवान। पहला शब्द है सो मूर्त भगवान श्लोक गुरु तेग बहादुर साहब जी ने। महाराज कहने सुख दुख जाए परसै नहीं जिदे अंदर सुरत ते ना सुख असर करे ते ना दुख असर करे। ये दो चीजा साढ़े जीवन च इन्ना गहरा असर कर दिया ने। जो सुख हुंदा है याद रखे उदो भी बंदे नू करतार भुलदा है ते जो दुख हुंदा है कई बारी बंदा टुट जांदा उदो भी भुल जांदा है। ये दो चीजा कर दिया कि ने साढ़े जीवन च। जो सुख हुंदा है अक्सर बंदा हंकारी हो जांदा सारे नहीं अक्सर बंदे हंकारी हो जाते हैं। जो दुख आता है उलांभे देंदे देंदे खीणता भी चली जाते हैं। सतगुरु कहते हैं सुख दुख जाए परसै नहीं लोभ मोह अभिमान कहो नानक सुन रे मना सो मूर्त भगवान। अगला वचन मैं मुक्त पदार्थ सिर्फ कह रहा उस्त निंदिया नाहे जे जिदे उत्ते उस्त का भी असर नहीं तो निंदिया का भी नहीं। उस्त निंदिया नाहे जे कंचन लोह समान कहो नानक सुन रे मना मुक्त ताहे तै जान मुक्त पदार्थ पाई है। क्योंकि कहन मैं कह के बड़ी छेती चला गया मुक्त पदार्थ पर मन च आएगा केड़ा। सतगुरु कह रहे ने उस्त निंदिया नाहे जे कंचन लोह समान कहो नानक सुन रे मना मुक्त ताहे तै जान। तीजा बचन खरक सोग जाकै नहीं बैरी मीत समान कहो नानक सुन रे मना मुक्त ताहे तै जान। दोहरी शब्द वरत्या इत्थे सतगुरां ने कहा कि जिन्हों साधु संगत मिल गई मुक्त पदार्थ पाई है ठाक ना अब घट घाट उस बंदे दे जीवन विच कोई भी वासना कोई भी वकार रुकावट नहीं पा सकता। एक कल आपां पढ़िया हुण अगला सवाल सी उहदी संगत किन्ना को असर करदी है। देखो वो बचन सी एक घड़ी आधी घड़ी आधी खूते आद। अज वैसे शब्द भगत जी ने 64 घड़ी वरते है जिहड़ा अज आया। मैं आप जी नूं कल भी कहा सी भी कोई सज्जन जिहड़े ने इहनूं 64 घड़ियां दा मानदे ने कई 60 घड़ियां मानदे ने एक पैर दीआं। खैर मैं अर्ज कीती सी जे 25 मिनट भी घड़ी दे लाओ ते अद्धे 12:30 तो आपां कीते 6 मिनट ते कोई सेकिंड इन्ना समय कीते संगत मिल जाए। कबीर एक घड़ी आदि खूं ते आद भगतन सेती गोष्टे जो कीने सो लाभ। गोष्टे दा अर्थ कली चर्चा करके नहीं कालज कीती सी गुरबाणी च दो अर्थ ने गोष्ट दे। एक गोष्ट दा अर्थ है बहस करनी चर्चा करनी ते दूसरा गोष्ट दा अर्थ है मिलाप मिल जाना। महाराज कहिंदे भगती करन वाले नाल थोड़े तो थोड़ा समा भी मिलाप हो जाए संगत मिल जाए उहदा लाभ है। हुण अगली कल बेनती मैं कीती सी कि बंदा संगत भी करे तीर्थ ते भी जाए यात्रावां भी करे सारियां थावां ते जाए पुन कर्म करे पर करतूतां मारियां करे फिर वो लेखे पै जाएगा। हुण अगले बचन सन कबीर भांग माछली सुरापान। किसे विद्वान नूं देख लियो चाहे सिंह सभा लहर दे टीकाकार ने चाहे संप्रदाय टीकाकार ने चाहे पछम की विद्या के प्रभाव नूं कबूल के टीका करने वाले ने पर इस अर्थ ते आके सारे इको ने कोई कमा के अर्थ नहीं कर सकिया। भांग माछली सुरापान मैं बेनती कल की सी संप्रदाय भांग का अर्थ करते ने भंगा यदा अर्थ कुखड़ पर नहीं भांग का अर्थ है भंग। दूजी गल मछली सुरा का अर्थ है शराब ते पान का अर्थ कल आपां कीता सी पीण वाला क्योंकि गुरबाणी दे जिहड़ा अपना सिद्धांत है उहदे मुताबक पान दे नन्ने नूं उत्ते सिहारी लगी है इहदा अर्थ चबाण वाला पान सुपारी नहीं इहदा अर्थ है पीण वाला। भांग माछली सुरा पान जो जो प्राणी खाहे हुण इह स्पष्ट है कि तीर्थ भी जांदा है वर्त भी रखदा है नेम भी करदा है सारे धर्म दे कर्म करदा है पर अजे तक बंदा निक्की जी जीव दे रस तो मुक्त नहीं होया।
बाबा जी कह रहे ने भांग माछली सुरापान जो जो पुरानी काहे तीर्थ बरत नेम किए। वो भावे तीर्थां ते इनान करे भावे कह जी मैं ता बड़ा नेमी प्रेमी हाँ। ते महाराज कहिंदे ने सबे रसातल जाहे वो सारे दे सारे समझो भी खूह खाते पै गए जे बंदा इन्हां चीजां ते कंट्रोल नहीं कर सकिया। मैं कल एक बेनती की सी देखो मैनू कोई शक नहीं इच मेरे वास्ते सब तो पहला ते सब तो वड्डा प्रमाण गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी हस्तो इतिहास दीआं किताबां बाद विच ने। मैं भी पढ़ना जी स्रोत साडे कोल सारे ने पुरातन स्रोत साडे कविता विच ने ज्यादा जां जन्म साखियां ने। कई वारी जीव दे खान दी गल चलदी है असीं अपने अंदर दे औगन नूं लुकाण दे लई धर्म दा सहारा बड़ा लैंदे हां। जिन्हां ने फीम खाधी उन्होंने कह दिता महाराज फीम खांदे सां, जिन्हां ने भंग पीती उन्हें कहता भंग पीती। मेरी गल का गुस्सा ना करो, तुहाडे सामने गुरु ग्रंथ साहिब इष्ट है। ते कल मैं कहा सी बाबर ने हजूर नूं कोई जन्म साखी वर लो भाई बाले वाली जन्म साखी वलैत वाली, बाबर ने हजूर नूं थैली पेट कीती सी भंग दी। अज मैं पढ़ के आया स्रोत नूं हजूर ने इको गल की कहन लगे काहदे लई, कहन लगे तुसी दरवेश हो ते भंग खा के भंग पी के ताड़ी लगती है दरवेशां दी। हजूर ने उत्थे शब्द उच्चारण किया सी भौ तेरा भांग खलड़ी मेरा चीत मैं दीवाना भया अतीत। वो महाराज ने कहा तू केड़ी बाबर भंग दे रहे हैं, परमात्मा दा भय ही नशा है ते तू आ थैली च भंग पाई फिरना। मेरे वास्ते मेरा सीना मेरा खिरदा ही है जिदे विच मैं भंग टिकाई हुई है। मैं आप नूं तां बेनती कीती, सवाल उठदा है कि गुरु लंगर च आ कुछ बनता सी कहिंदे आ ना, मैनूं पता इतिहास दे मैनूं हर ग्रंथ दा पता किथे किथे की लिखिया, पर मेरा यतन हुंदा कदी स्टेज ते दुबदा ना क्रिएट करो। आप ही आपां लीरा लीरो होए पए, घट्टो घट स्टेज ते इहो जी रखो जिथे इकट्ठे बह सकी आपां। गुरु ग्रंथ साहिब विच दो लंगरां दा जिक्र हुंदा है, एक गुरु अंगद साहिब जी दा ते एक गुरु अमरदास जी दा।

अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूं। अनल हक, मैं खुदा हूं। कबीर साहब कहते ने मैं भी अभेद हां पर मैं नहीं केवल तू है। देखो अभेदता है, उन्होंने तीन चार प्रमाण मैं तुम्हें सुनाना। मैं कहना वह लुकांदी कोई नहीं, वह कहने अब तो जाए चढ़े सिंघासन सुन सकी जी मैं पी बसै। ये श्लोक, अब तो जाए चढ़े सिंघासन, उस परम आसन ते बैठ गए, मिले कै सारंग पानी जुमदे जी, जुमदे जी मिल गए सारंग पानी जिन्हें तनक धारण किया परमात्मा शस्त्रधारी। मेरे है सारंग पानी राम कबीरा एक भय है। कहने भैने हूं पता नहीं लगता राम कौन ते कबीर कौन। राम कबीरा एक भय को न सके पछानी। अगला एक वचन हो रहे, संतन संग कबीरा बिगड़ियो। मैं एक बार कथा कर दिया, क्या सी पंजाबी अर्थ नहीं करना बिगड़ गया, इथे बिगड़ियो दा अर्थ चेंज हो गया। संतन संग कबीरा बिगड़ियो, सो कबीर राम है कोई निबरियो। वह परमात्मा का रूप हो गया। तीजा वचन उन्होंने एक होर पढ़ो, कबीर जा को खोजते पायो सोई ठोर, जिन्हू बाहर लभ दे सौ तो घर बैठा सी, पायो सोई ठोर सोई फिर कह तू भया जा को कहता और। एक और उन्होंने शब्द जी, क्योंकि उन्होंने बाणी च उन्हें अपने सारे प्रमाण दिते है। वह कहते ने असलीयत है कि तू तू करता, तू हूं पता ही नहीं जियो के पियो, तू तू करता तू हुआ मुझ में राह न हूं, जब आपा पर का मिट गया जत देखूं तत तू। मैं बेनती करांगा जी इस अवस्था नूं आप जी सुखमणि साहब च पढ़ दियो, ज्यों जल में जल आए कठाना त्यों ज्योति संग समाना। सोठ राग च पढ़ दियो, गुर कृपा जे नरको कीनी ते ए जुगत पछानी, नानक लीन भयो गोबिंद स्यों ज्यों पानी संग पानी। पर प्रॉब्लम ये वे अंदर झाती मारन नहीं देंदा, मन नहीं अंदर वड़न देंदा, बंदे कमले हो जांदे। तुहानूं सच्ची दसा सब तो औखा है कल्या रहना। एक कल होर चीज है, एकांत होर चीज है। कोई चीज ना तुसीं बंदे को रखो, ना फोन दियो, ना टीवी दियो, ना कोई रसाला दियो, ना मैगजीन दियो, उहनूं को कल्ला रहे। जे ते जो कोई शदाई हो जूगा अगर हूं काम यह होता ए आई कर दी भी सब कुछ। मैं कि सोचना बंदे सारे खाली हो गए की करे, सोचता ना बंदा कई बार। जे आप पहला शुरुआत करिए अपने अंदर वाले पासे जाने लई, क्योंकि अंदर जाने लई मूल मंत्र गुर मंत्र पर अमृतधारी होना जरूरी है। अमृतधारी केवल शस्त्रधारी नहीं, अमृतधारी गुरु नाम दृढ़ कराया जाता है। जे अपने अंदर वाले पासे चलांगे, शब्द सानू उस परम सत नाल जोड़दा जिहड़ा साडे अंदर है, बाहर ते है ही नहीं। भगतां ने महापुरखां सब ने कहा, पर प्रॉब्लम ये वे आपां बार बार झाती सारे बार मुखी हैं जी, अंतरमुखी कोई टावा टावा है जी। एक छोटी जी कहानी नाल मैं समाप्ति करना। कहने कोई साधु सी ते ओ ना लाल सी उहदे कोल, कहानी है याद रखियो इहनू शब्द नाल ना किते वेखण लग पिओ गुरमत अनुसार की ठीक है। उन्हें ना लाल कढ के बहना करना रोज, वो पत्थर इन्ना चमकीला सी जदों बहना करना उहदे चेहरे दे उत्ते रोशनी आउणी। एक दिन एक बंदा लंघिया, कहिंदा यार बाबे कोल पत्थर बड़ा कमाल दा, किन्ने कु दा होवेगा। वो दो चार दिन लंघदा रहा, मन ने कहा भी आपां नूं चाहीदा है इहदा चेला बन के चोरी कर सकने। वो आ गया जी, वो जदों बाबे ने बहना पत्थर बाहर रख लेना तो उन्हें वेखी जाना। एक दिन की होया जी, बाबा इशनान करन गया ते उन्हें चेले नूं कहा मेरे नाल चल। वो कहिंदा नहीं नहीं जी मैं पिछे रहना, मेरी तबीयत ठीक नहीं, तुसीं इशनान कर आओ। वो इशनान करन गया, वह पिछों सारी उहदी बेचारी झोंपड़ी फोड़ मारी, उहदे कपड़े फोले, उहदी उत्तों सारी छत फोली। वो कहिंदा भी रख कित्थे गया, ये पत्थर रखदा कित्थे वे। वो आया दूजे दिन फिर फोलिया पत्थर, फिर उन्हें कढ के सामने रख लिया। उन्हें कहा भी कढ़दा भी ये, यह रख के कितने जाता है, जाता खाली हाथ नहाने वाली लंगोटी पकड़ी के कपड़ा। वो आख गया, कहिंदा भी जादूगर लगता भी करामात ना कढ़दा। उन्होंने कहिंदा जी मैं अपने घर च

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय श्री अंगद गुर ते अमरदास रामदासी हुए सहाय अर्जुन हर गोबिंद नाम सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई आय जिह जिठे सब दुख जाय तेग बहादुर सिमरिया घर नाउ ने दया में ताए सब थाई हुए सहाय साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी सब थाई हुए सहाय दसा पात साहिया दी जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तरके बोलना जी पंजा प्यारियां चौहान साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिना नाम जपिया वंड के छकिया देख तलाई तेंग वाही देख के अमृत कीता तिना प्यारियां सच्यारियां दी कमाई दा ध्यान तरके बोलना जी जिन्ना सिंह सिंघनियां ने धर्म हे सीह दिते बंद बंद कटवाए खोपरिया लुहाइया तरखड़िया ते चढ़े तनारिया नाल चरवाए गुरुद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानिया कीतिया धर्म नहीं हारिया सिखी सिदक किसान सुवासा सांग निभाया तिना समूह शहीदा दी कमाई दा ध्यान तरके बोलना जी पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां जी का ध्यान तरके बोलना जी प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चेतावन चेतावन का सदका सर्ब सुख होए जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रियायत देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलना दे सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृत सर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार होवे बोलना जी सिखां दा मानने वा मत उची मत पत दे राखे आप अकाल पुरख वाहिगुरु अपने पंथ दिसदा सहाई दतार जियो श्री

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

गुरुप्रसाद गौड़ी सुखमनी महला पंजवा सलोक आद गुराए नमः जुगाद गुराए नमः सत गुराए नमः श्री गुरुदेवाय नमः अष्टपदी सिमरौ सिमर सिमर सुख पावो कल कलेश तन माहे मिटामो।

तह नानक हर हर अमृत बरख है। भक्त जना की बर्तन नाम, संत जना के मन विश्राम। हर का नाम दास की ओट, हर के नाम उदरे जन कोट।

हर हर जन के ओठ सतानी, हर प्रताप जन अवर न जानी। ओत पोत जन हर सराते, सुन्न समाध नाम रसमाते। आठ बहर जन हर हर जपाए, हर का भगत प्रगट नहीं शपाए। हर की भगत

रतन त्या कौटी संग रचाए सा छोड़ झूठ संग मचाए जो छड़ना सो अस्थिर कर माना जो होवन सो दूर पराना छोड़ जाए तिसका श्रम करे संग सहाय तिस पर हराय चंदन लेप उतारे तोहे गर्द प्रीत पसम संग होए अंधकूप में पतित बिकराल नानक काढ़ लियो प्रभु दयाल करतूत पशु की मानस जात लोक बचारा करे दिन रात बार पेखंतर मल माया शब्द नाहे कश करे शबाया बाहर ज्ञान ध्यान शनान अंतर व्यापे लोभ सुमान अंतर अगन बार तन स्वाहा गल पाथर कैसे तर यथा जागे अंतर बसे प्रभ आप नानक ते जन सहज समात सुन अंधा कैसे मार्ग पावे करगे लिह ओढ़ निबहावे कहाँ बुझार्थ बुझे डूरा निस्कैये तो समझे पूरा कहाँ बिसन बद गावे गुंग जतन करे तो भी सुर भंग कै पिंगल पर्वत पर पवन नहीं हो तो उस गमन करताल करुणा में दीन बेनती कर नानक तुमरी कृपा तर संग सहाई सो आवे ना चीत जो बै राई तास्यो प्रीत बलवा कह ग्रह पीतर बसाए अंध केल माया रंग रसाए दृढ़कर माने मने प्रतीत काल ना आवे मूढ़े चीत भैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ बिकार महालोभ त्रोह याहू जुगत बेहाने कई जन्म

आवत जावत जन्म है मराय, जिसके अंतर बस है निरंकार, तिसकी सीख तराय संसार, जो तुम पाने तिन प्रभ जाता, नानक उन जन चरण पराता, करो बेंती पार ब्रह्म सब जान, अपना किया आपे मान, आपे आप करत नबेरा, किसे दूर जनावत किसे बजावत नेरा, उपाव सियानम सगल ते राहत, सबका जाने आत्म की रहत, जिस पावे तिस लै

साध जना की आचार्य कथा अष्टपदी। साध के संग मुखूजल होत, सा संग माल सगली खोत, साध के संग मिटया बिमान, साध के संग प्रगटा सुगियान, साध के संग बुझे ब्रह्म रेरा, साध संग सबोतन बेरा, साध के संग पाए नाम रतन, साध के संग एक उपर जतन,

सासंग अमृत रस पुंछा सासंग सबकी रेन साधक संग मनोहर बहन साधक संग न गतमुता वै साधक संग सदा सुख पाव साधक संग माया ते भिन्न सासंग नानक प्रभ सुप्रसन्न सासंग दुश्मन समीत साधु कै संग महापुनीत सासंग किस्यो नहीं बैर साधक संग न बींगा पैर साधक

अवर्णापेक्षा एकस्मिन् कोय नानके लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होय। अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल आलेप। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख जैसे सूर सर्व को शोक। ब्रह्म ज्ञानी का दृश्य मान जैसे राजरंग को लागे तुल्पवान। ब्रह्म ज्ञानी का धीरज एक ज्यो वसुदा कऊ खोद कऊ चंदन लेप। ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाह नानक जो पावक का सह सुबाह। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल थे निर्मला जैसे मैल ना लागे जला। ब्रह्म ज्ञानी के मानो प्रकाश जैसे तरु भरे आकाश। ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सतर समान ब्रह्म ज्ञानी के नाही अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी उच्चते उच्चा मन अपने सप्ते नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन पहे नानक जन प्रभ आप करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल कीरी नाथ मृस ब्रह्म ज्ञानी चीना।

देवदेश नानक पंडित को सदा आदेश बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चहवर नामे जपे गौ नाम जो जो जपे तिसकी गत होए सा संग पावे जन को है कर कृपा अंतर उतारे पास प्रेत मुक्त पात्र को तारे सर्व रोग का औखद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम काहू जुगत कितना पाइय धर्म नानक तिस मिलै लिखिया तुर कर्म।

राष्ट्रपति, कई गोट होए पुजारी, कई गोट आचार व्यवहारी, कई गोट भय तीर्थवासी, कई गोट बान भ्रमे उदासी, कई गोट वेद गए स्रोते, कई गोट तपीसर होते, कई गोट आत्म ध्यान धारे, कई गोट गबका विचारे, कई गोट नवतन नाम ध्यावे, नान करते का अंत न पावे, कई गोट भय अभिमानी, कई गोट आंधा ज्ञानी, कई गोट कृपन कठोर, कई गोट अभिगातम ने खोर, कई गोट पर दर्प को हिरे, कई गोट पर दुख ना करे, कई गोट माया सर माहे, कई गोट पर देश ब्रह्म परमाहे,

राष्ट्रपति संत के दुखन यार जा घटे, संत के दुखन जमते नहीं छुटाए, संत के दुखन सुख सब जाए, संत के दुखन नरक में पाए, संत के दुखन मत ए मलीन, संत के दुखन सो बात हीन, संत के हाथे गो रखे ना गोए, संत के दुखन थान भ्रष्ट होए, संत कृपाल कृपा जे करे नानक, संत संग नंदक पी तराए, संत के दुखन ते मुख पवै, संतन के दुखन काग जो लवै, संतन के दुखन सर्व जोन पाए, संत के दुखन त्रिगत जोन किरमाए, संतन के दुखन तृष्णा में जलाय, संत के दुखन सब गोशलाय, संत के दुखन तेज सब जाए, संत के दुखन नीच नीच आए, संत दुखी का था को नाहे, नानक सदभाविता ओए भी गत पाए, संत का नंदक महत दाई, संत का नंदक इंट करना पाई, संत का

संत का दुखी ना मरे ना जी भाई है, संत के दुखी की पुजे ना आशा, संत का दुखी उठ चले निराशा, संत का दुख ना दृष्टा कोई, जैसा भाव है तैसा कोई होए, पया गर्तना मेटा कोए, नानक जानना सच्चा सोए, सब करते

सो सेवा को कस ते डराय जैसा सत ऐसा दृष्टा अपने कार्ज में आप समाया सोदत सोदत सोदत सीजया गुर प्रसाद तत् सब बुझया जब देखो तब सब कुछ मूल नानक सो सुखम सोई असूल न के जन्मे न किश मरे आपन चलते आप ही कर आपन जामन दृष्ट अंदृष्ट आज्ञा कारी धारी सब श्रेष्ठ आपे आप सकल में आप अनुग जुगत रज था भूथाप अविनाशी नाई किश खंड धारण धार्यो ब्रह्मांड अलख अपे पुरख प्रताप आप जपाए था नानक जाप जिन प्रभ जाता सो शोभा बंद सकल संसार उदर तन मंद प्रभ के सेवक सकल उदारण प्रभ के सेवक दुख विसार आपे मेल लय कृपाल गुर का शब्द जप है निहाल उनकी सेवा सोई लागे सुनो कृपा करे बड़ भाग नाम जपत पावे बिश्राम नानक तिन पुर को उत्तम करमान जो किश कर सो प्रभ कह रंग सदा सदा बसे हर संग सह सुभाए हो वैसो होए करने हार पछाण है सोए प्रभ का किया जन्म ईष्ट गाना जैसा सा तैसा दृष्टाना जिते उपजे तमाए समाए ओए सुख निधान उन्हु बने आए आपस को आप दिनो मान नानक प्रभ जन एक हो जान सलोक सर्व कला भरपूर प्रभ बिरथा जानन हार जाके सिमरन उदरिया नानक दस बलिहार अष्टपदी।

वैसो प्रसन्न अष्टपदी अविनाशी परम मन में राग मानु की तुम प्रीत्याग तिस्ते परायणाई कुछ गोये सर्व निरंतर एको सोये अभे भिन्ना अभे दाना गहर गंभीर गिर सुजाना पारब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निधान दयाल बख्शांद था तेरे की चरणी पाओ नानक मन एह नाओ मनसा पूर्ण सरना जोग जो कर पाया सो ई होग हरन भरन जाका नेत्र फोर तिसका मंत्र ना जाने होर अणध रूप मंगल सत जाके सर्वथोक सुनिए घर ताक राज में राज योग में जोगी तब मैं तविसर ग्रस्त में भोगी त्याए त्याए भगत सुभ पाया नानक तस्वर का कने अंत ना पाया जागी लीला किमित नाहे सगल देव हारे बगाहे पिता का जन्म के जाने पूत सगल परोही अपने सूत सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे जनदास राम ध्यावे से ते गुण में जागो परमाए जन्म मरे फिर आवा जाए ऊच नीच तिसके असान जैसा जनावे तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना पेकर एक रंग नाना विध गिनो विस्तार पर विनाशी एक अंकार नाना जल्द ग्रेत खिन माहे पूर्य पूर्ण सब ठाए नाना विध कर बंत मनाई अपनी कीमत आपे पाई सब गढ़ तिसके सब तिसके ठाओ जब जब जीवे नान घर नाओ नाम के तारे सगरे चंद नाम के तारे खंड ब्रह्मांड नाम के तारे सिमरत वेद पुराण नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान नाम के तारे आकाश पाताल नाम के तारे सगल आकार नाम के तारे पुरगिया सब भवन नाम के संगदरे सुन सरवन कर कृपा सपने नाम लाए नानक चौथे पद में सो जन कद पाए रूप सत जाका सत स्थान पुरख सत केवल प्रधान करतूत सत सत जाकी बाणी सत पुरख सब माहे सवाणी सत कर्म जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करणी निर्मल निर्मली शिव जाए तिसे सब भली सत नाम प्रभुगा सुखदाई विश्वास सत नान गुरते पाई सत भजन साधु उपदेश सत जन जागे हृदय प्रवेश सत नृत बुझे जय कुए नाम जपता की गत होए आप सत किया सब साते आपे जाने अपनी मित गत जिसकी सरसो करने हार वरना बूझ गर्त विचार करते कीमत ना जाने किया नानक ज्योत स्वभाव सो वरतिया बिस्मन बिस्म भय बिस्माद जन बुझा आया स्वाद प्रभु के रंग राज जन रहे गुरु के भजन पदार्थ लहे

सेवक नाम करंग सेवक प्रपालनारा सेवक ही राखे निरंकारा सो सेवक जिस दया प्रवतारे नानक सो सेवक सा सा समारे अपने जन का प्रता ढाके अपने सेवक की सरबर राखे अपने दास को दे बढ़ाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आपद राखे ताकि गदबिंद को न लाखे प्रभु के सेवक काव को ना बहुछाए प्रभु के सेवक ऊंचते उचे जो प्रभु ने सेवा लाया नानक सो सेवक दैत सब प्रगटाया निकी गिरी मैं कल राखे भस्म करे लश्कर ओ कोट लाके जिसका सासना काटते आपता को राख देकर हाथ मानस जतन कर दबो भान तिसके करता बिरथे जाद मारे ना राखे अवरना को ए सर्व जिया का राखा सोए काय सोच करे रे प्राणी जप नानक प्रभ लाख बिडाणी बारंग बार बार प्रभ जपिया पी अमृते मंतंत्र पिया नाम रतन जन गुरमुख पाया तिस्क शबर नाई दृष्टाया नाम

राष्ट्रपति आप कथे आप सुनने और आप एक आप विस्तार जात भावता सृष्ट पाए अपने भाणे लाए समाए तुम ते भिन्न ही कुछ होया अपन सो सब जगत वर परोए जागो प्रभ जीव आप जाए सच नाम सोई जन पाए सो समदर्शी तत का बेता नानक सकल सृष्ट का जेता

सजन को कोई ना पहुंचनार, सिर पर ठाठा गुर सूरा, नानक ताके कार्ज पूरा, मत पूरी अमृत जाकी, दृष्ट दर्शन पेख तो उदरत श्रेष्ठ, चरण कमल जाके अनूप, सफल दर्शन सुंदर हर रूप, तन सेवा सेवक प्रवान, अंदर जामी पुरख प्रधान, जिस मन बसे सोत निहाल, ताके निकट न आपदकाल, अमर भय अमर

अष्टपदे पूरे गुरु का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख सा सा सिमरो गोविंद मन अंतर गुदरा चिंद आस अनित त्यागोद्रंग संदना की दूर मन मंग आप छोड़ बेंदी कर हो सासंग अगन सागर तर हो अर्थन के बरले हो पंडार नान गुरु पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद

ना जानिए समुंद साह सुल्तान गृह से ती माल धन कीड़ी तोलना होवनी जे तिस मन हो ना विसर है अंतर।

जाए। धर्म खण काय हो धर्म ज्ञान खण काख हो कर्म केते पावन पाणी वह संतर केते कान महेश केते भर में काढ़ घड़ी रूप रंग के वेश

दान है, त्रिवर्ग है, सर्ग है, अनिल है, अनाद है, अज है, अजाद है, जन्म है, वर्ण है, भूत है, पर्ण है, अगंज है, अपंज है, अचूज है, अचंज है, अमीक है, रफीक है, अतंध है, अबंध है, निर्भू

परम रूप पुनीत मुहूर्त पूर्ण पुरुखे पार सर्विस्वरत स्वयं पव गण पंजन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरुखे आदेश धर्म धाम सो परम रहते अभूत अलंख अपेस अंग रंग नरंग जा कह जात पावन नाम गर्भ गंजन।

आत्दुत प्रचंड मित गाते अखंड अलिसे कर्म अदृश्य धर्म सर्वा प्रणाड अंडड भाड चारी शांत व प्रसाद गोबिंदे मुकंदे उदारे पारे हरि अंग करि अंग निनामे कामे पजहंग प्रयासंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वरती चतर चक्र भरती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र माने चतर चक्र दाने चाचरी शांत ना सतरय ना मित्रय ना परमंग ना पितरय ना कर्मंग ना काय जन्मंग अजाय न चित्तरय ना मित्रय परे है पवित्रय परथिसे अधिसे धृसे अकृसे भगवती शांत व प्रसाद कहते क्या छेज देसे क्या पेज पेसे क्या गांज कर में क्या पांज पर में क्या पेज लोक क्या देत शोक क्या बतहूत बरने के विपहूत करने के राजंग प्रभा के धर्मंग तुझा है के अशोक बरने के सर्वा अपरने के जगतंग रीति है के शत्रंग क्षत्रि है के ब्रह्मंग स्वरूप है के अनुपौनूप है के आद अदेव है के आप अपेव है

के अफुल गुनाह है के सहान सा है के कारण कुनिंद है के रोजी देहांत है के राज करहीम है के कर्मं करीम है के सर्वं कली है के सर्वं दली है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र दान्य है के सर्वत्र गावन है के सर्वत्र पाहुन है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है

अनित्य हैं, सुनित्य हैं, अजात हैं, आजाद हैं, चर परिशांत वे प्रसाद, सर्वं हंता, सर्वं गंता, सर्वं ख्याता, सर्वं ज्ञाता, सर्वं हर्ता, सर्वं कर्ता, सर्वं प्राणं, सर्वं त्राणं, सर्वं कर्मं, सर्वं धर्मं, सर्वं जुगता, हर्वं भुक्ता, सावल शांत वे प्रसाद, नमो नरकनाशे दैवं प्रकाशे अंगं स्वरूपे पंखं विभूते प्रमाथं प्रमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी नामे त्रिपंगी त्रिकामे

माता पिता कुटाम सह स्यो पित संग सबाइया कह दे पवित सुन दे पवित से पवित जिनी मन वसाया कह नानक से पवित जिनी गुरमुख हर हर त्याया करमी सह न उपजाय विण सहजे सहसा न जाय नह जाए सहसा किते संजम नह जाए सहसा कितै संजम रह कर्म कमाए सहसे जियो मलीन है कित संजम धोता जाय मन धोवो शब्द लग वर स्यो रह चित लाय कह नानक गुर प्रसादी सहज उपजय इह सहसा विजाय

सुन त्यावन जेते लख नाम करतार। सूखम मूरत नाम निरंजन काया काया कार सतिया मन संतोख।

आप लै मिलाई तू आप कृपा करके कईआं नूं अपने प्यारिआं नूं आप अपने नाल मिला लैंदा है। मैं तुझ बिन बेली को नहीं तू अंत सखाई, मेरा तेरे तो बिना होर कोई इहो जिहा साथी नहीं, क्योंकि तू अखीर विच भी तू साथी बनिआ रहिंदा है। जो तेरी शरणागते तिन लै छड़ाई, वाहिगुरु जी जिहड़े तेरी शरण विच रहिंदे ने उहनां नूं तू मोह माया दे बंधनां तों विकारां तों तू आप छुड़ा लैंदा है, आप बचा लैंदा है। नानक नानक दा कक्का बिल्कुल मुक्ता है, गुरबाणी व्याकरण मुताबिक संबोधन है। हे नानक नानक, थोड़ा जा रुक के पाठ करना है। नानक वे परवाह है तिस तिल ना तमाई, हे नानक ओ परमात्मा वे परवाह, उसे नु किसी तरह की कोई परवाह नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई झोरा नहीं। ते कहंदे ने तिस तिल ना तमाई, उस परमात्मा नु एक तिल मात्र भी किसी चीज दा लालच नहीं। सतगुरु जी कृपा करन ए पावन उपदेश साडे सारयां दे हिरदे विच वस जावे, फिर ए लोक सुखी ए परलोक सुहेले। नानक हर प्रभापे मिले भुल्लां चुक्कां दी खिमांग जाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। रामकली महला तीजा, आनंद इको अंकार, सतगुर प्रसाद, आनंद पया मेरी मां।

0: भगवान श्री गुरु जी की फतेह।
1: तू ठाकुर तुम पहरदास, जियो पिंड सब तेरी रास, तुम मात पिता

चाहे लाइट कह लो, लाइट की है सच कि अंधेरा की है झूठ, लाइट लाइट लाइट के नाम अंगस्ता दिखेगा और रब का दरवाजा दरवाजा दिखेगा। जंगल में साडा घर होवे तो होवे मस्या की रात, एक दरखा का अंधेरा एक मस्या की रात का अंधेरा, तो फिर कोई चुगी लभ के दसे कि सही अपना घर से कोई लभ के दसे नहीं लग सके। जरूरत का भी पड़ेगी लाइट की, लाइट होगी घड़े जंगल अपना घर लग जाए। इस तरह संसार को अंधेरा है, लाइट है सच की, जिन्हें कोई सच होगा ओनू घर लग जाएगा, जिन्हें को सच नहीं होगा वह अपना घर कभी भी नहीं लग सकेगा, कभी भी नहीं लग सकेगा। तो मेरे साहब जी ने सात कहो सुन लो सभे, तो दुनिया के लोग एक सच सुनो कि दुनिया च झूठ किन्ना है अंधेरा किन्ना है। मेरे पहले पातशाह जी ने लिखता के पूर कुमार को सच चंद्रमा पीते नहीं कह चले, और पाल सुनी हुई अंधेरे राह ना को साहब जी फरमाते हैं कि मैं पालदी मैं थक गई हूं, पर मैनू अंधेरे राह नहीं लगता। इन्हों को अंधेरा जिम्मे मस्या की रात में चंद्रमा नहीं दिसता, इस तरह ही होर कल अंधेरे सच कि नजरी आता ही नहीं। करा तुम्हें पूछा तुम क्यों आयो, अच्छा मैं सच लभन वास्ते चलिया। पूर उमान वर्त्या आओ पालन चलिया संसारा, मैं सच में लभन वास्ते तुरंत कि कितने सच मिले, पर सच थोड़े को भी है नहीं, तुम भुल गए विधियों सिद्धियों पास कोई सच नाल ना तुरिया आया। सच बोलने वाले ने तत्ती लोह से बिठा, सच बोलने वाले ने उपली देव में बिठा दिया, सच बोलने वाले ने ग्वाली अगे किले च कैद कर दिया, सच बोलने वाले ने दिल्ली चांदनी चौक से शहीद कर दिया। सच बोलने वाले के एक एक बंद छोटे किया गया, टोकरियां लाइया गई, चर्खियां चढ़िया गया, कुंभिया गया, जिन्हें रूह कुंभी का इन्हें सिखा कुंभिया जाता है। जिंदा फड़ावे 80 रुपए इनाम, जिहड़ा फिर लै आवे 40 रुपए इनाम दिता जाए। इन्हीं सच के खिलाफ गौमित हो गई, पर फिर ही सच कह रहा है वो सच का सदका तुम सारी इतने बैठे हो। हम जिंदगी वास्ते लाइट लेनी है, लाइट कौन देगा, गुरु गोबिंद सिंह सच्चा पातशाह। सारे खड़े हो गई लाइट के सबना नहीं चाहिए है, खड़ाक हो गए कतर हो गए तो बिजली पैदा होगी, दूरों चीज डिगे तो अग विचों निकलती है, पत्थर से पत्थर मारो अग निकलती, डब्बी की पीली में घसाओ मसाले उसे तो अग पैदा हो जाए। वैसे मुंह च पालो कोई डर नहीं, लेकिन कसावत अग होगी जब तुम बोलोगे उदो गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह के तेज का प्रकाश तुहाडे हिरदे च आ जाएगा, क्योंकि इस बाणी के नाल कनैक्शन कलगी कर सच्चे पातशाह दा अकाल पुरख। इसलिए ये बाणी बोलन के नाल धुनी के नाल अंदर कोई चीज ऐसी होगी जी आनंद दे जाएगी, हलारा दे जाएगी। इस सारे पड़े

काहू ना पछाना। इतनी पहचानी कटी महापुरुष काहू ना पछाना, कर्म धर्म को कछु न जाना। ना कर्म दसिया चंगा कि ना धर्म दसिया, आखा पूजा मेरी करूंगा। अवरन की आशा कुछ नाही, एक आस करो मन माही। कहते होर किसी की आस न रखो बिना अकाल पुरख। अवरन की आशा कुछ नाही, एक आस करो मन माही।

दूर करवाते हैं। एक कारण प्रभ हमें बनाओ एक पाठ ए लोक बिठायो आत्मश्रीवा जिसे गोविंद आपकी मशीनरी भेजे उसका सारा भेद दिता जाता कि उसे आ नुकसान इस तरह उसे डाके वजते ने इस तरह उसे रिश्वत होती है इस तरह के लोग उसे भेजे जाते हैं तो प्रबंध चंगा हो जाए। यह संसार बड़ा विशाल है ये कर्म बड़े सन जिन्हें हिंदुस्तान च कर्म धर्म के धर्म सन उन्हें किसी देश में है ही नहीं। जे घर के पांच जी ने तो पंजा का अपना अपना वखरा वखरा धर्म वखरा वखरा इष्ट है। इसे 33 करोड़ देवता बन गया कि पूजन वाले बहुते सन तो गुरु लभते नहीं सन और फिर गुरु ज्यादा हो गए पूजन वाले घट गए। हाजूर कहते मैंने यह सारा भेद दस के मैंने सारा राज दे के अकाल पुरख ने इस लोक से बिठाया तो मैं सबना का राज खोलन लगा सच का आसरा लै चंगिया की रखवाली करा जिन्हें से जुल्म होगा उन्होंने थां अपने पुत्र कुर्बान कर देंगा उन्होंने बचा लूंगा पर जेड़े जालम ने उन्होंने मैं दंड दिया सजा दियांगा मैं किसी का भी लिहाज नहीं करना लिहाज करांगा केवल सच का करांगा जिदे का किसा करना ये कारण सब हमें बनायो भेद पाठ ए लोग उठायो भेद दस के जिन तिन कही सदन उजरो जिन्हें मैनू मेरे वाहिगुरु ने कही है मैं सारे कह लगा मुखादर करके ये चीज याद रखनी बिंद बिंद किस नायक ना करो एक दिन भेक नहीं करना और एक वह मिट भुलेखे च नहीं करना यह मैं बिल्कुल नहीं करना और ना किस कर्म देना बिंद बिंद किस नायक ना करो मैं ना भेक करना तेना वहन करना एक अकाल पुरख की कोट रखनी कहांगा कि लो प्यारे तो सारे कह रहे हैं

करोड़ रुपया इतने वार दिता जाए ना तो आह जरा सुख है उन्होंने नहीं लग सकता जरा तू प्राप्त हो गया। वे तो वा अमीर जरा सारी दुनिया का मालिक क्यों ना बने, कई इंद्र वारते जा आ चीज नहीं मिलती जी सू प्राप्त हो गई। ये हुई जे बख्शिश नाल ते बचेगी शुकराने दे नाल, हुई है बख्शिश नाल ते हिरदे च रहेगी शुकराने दे नाल। जे जड़ा भी होवे आ गई ते ये चीज गवाच जाती है, कसूर उड़ जाता है, कसूरी उड़ जाती है और कशबू उड़ जाती रहेगी। ये उसे जिसे शुकराने का प्याला रहेगा, शुकराने का भांडा बनिया रहेगा। यह कितने चीज रही है आ जी थानू प्राप्त है शुक्र सोना कितने रख दो लागतों पेटियों डब्बों में। यह जो सत्संग का समा है परमेश्वर दिता यह कितने रहा है ये शुक्र शुक्र किया आसान मनिया तेरी खास मेहरबानी है तेरी खास बख्शिश है मैनू यह चीज दिखती है वो फिटी की रहेगी। जे ये कह देंगे कि तेरा की मतलब मैं आपकी ताकत ना चीज ली है आपकी सियाणप ली है आपकी जतन ना ली है तो उसे की हो गया हौ हौ करे ते आप जनाए बहु कर्म करे किछ खाए न पाए मनुख मुग्ध करे चितराई नाता धोता थाए न पाई जिया आया त्या जाति कर औगुण पछोता। ये कोई आ जी चीज है ना ये शुक्र के भांडे में रही। जे होमे का भांडा चला जाए तो वो खराब होकर उड़ जाती क्योंकि होमे का तेग है किसी पाए न ठंडे पानी च पा दो ढक दौ हेठा अग बाल दौ चाहे किन्ने भी पाए तुम संपर्क पे करो पारे ने रहना ही नहीं उड़ी जाएगा क्योंकि अग का तेग नहीं सह सकता। होमे है अग तो आ जी थानू चीज मिली है पारा जे मर जाए तो कोर हट जाए जे कच्चा खा जाए तो कोर हो जाए। यह चीज पारे वास्ते लिखी गई है। ये कदों तक साडे कोल ठहरेगा जिन्ना चिर यह किसी थर्मामीटर च बंद होया होया जहां तक टुट गया यह उड़ जाना इन लुकना ही नहीं। इसलिए आ जो थानू चीज प्राप्त है ना सतगुरु सदा रखे ये चार सदा ही बने रहे पर यह ठहरेगी कितने शुक्र के भांडे दूजे थान तो यह उड़ जाता। आओ तो शुक्र आके वह धनवाद करिए गुण गाइए साडा आया हुआ सफला हो जाए।

ठाकुर प्रतपालक नायक खसम हमारे निमख निमख तुम ही प्रतपालु हम बारक तुमरे तारे तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सजन सुहिल।

0: भक्त जना की बर्तन नाम,
1: संत जना के मन विश्राम,
0: हर का नाम दास की ओट,
1: हर के नाम उदरे जन कोट,
0: हर जस करत संत दिन राम।

0: कुछ प्रभु के हाथे।
1: कई कोड़ पे बैरागी
0: राम नाम संग चले बलागी।
1: कई कोड़ प्रभु को खोजनते
0: आत्म में पार ब्रह्म लहनते।

0: सोई करावे।
1: इसके हाथ होए तां सब कुछ ले,
0: जिस पावे सोई करे।
1: अनजान दिखिया मैं रचे,
0: जे जानते अपने आप बचे।
1: पर मैं भूला दे दिस धावे,
0: निमित माहे चार कुंड फिर आवे।
1: हर कृपा जिसे अपनी